0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप दिल से दिल तक। शुरू हो चुका है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा। बना रहेगा हमारा साथ पूरे 11 बजे तक। फिलहाल 10:04:30 आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, स्वागत।

तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे बहुत सारे ऐसे एफएम रेनबो परिवार के दोस्त हैं जो इस समय गा रहे होंगे कि फिदा हैं, वो भी आज के इस सुहाने मौसम पर। सुबह सुबह जिस तरह से बारिश की बूंदों ने हमें नींद से जगाया, हर किसी का दिन हो गया खुशनुमा। और ऐसे खुशनुमा दिन की अगर शुरुआत हो तो पूरा दिन महकता रहता है। और आज का जो दिन है वो अपने आप में बेहद खास है, तो हर कोई अपने अपने घर से बाहर निकलेगा। अगर हमारे पास घर के बाहर जगह नहीं है तो हम अपने घर की बालकनी में ही सही, अपने घर की छत पर ही सही, लेकिन एक पौधा जरूर लगाएंगे। और अगर लगा सकते हैं तो कोई ऐसा पौधा लगाएंगे जो भविष्य में वृक्ष बन सके, छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष। फिलहाल बता दूं आपको, स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें अगर गुजरे कल की, तो अधिकतम तापमान 36.8 यानी कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 23.2 अर्थात सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। उच्च आर्द्रता 98% और निम्न आर्द्रता 55% रही। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप, जहां ढेर सारे गाने और थोड़ी सी बातचीत। अगली आवाज आमिर जामाल की है।

नॉन स्टॉप गपशप और अगर बात करें हम खबरों के हवाले से, तो छात्रों से अब संघ छात्र संघ के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसा कोलकाता विश्वविद्यालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह अधिसूचना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी निर्देशों के अनुसार की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना प्रकाशित की थी जिसमें कहा था कि चूंकि कई वर्षों से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, परिणाम स्वरूप कोई सक्रिय संघ अस्तित्व में नहीं है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में छात्रों से संघ शुल्क एकत्र नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने की दिशा में तैयारियां शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्रीय योजना के तहत कपिल मुनि मंदिर क्षेत्र से लेकर पूरे तटीय इलाके के विकास को लेकर व्यापक योजना बनाई जा रही है।

जी हाँ दोस्तों, हमारा ये जो कार्यक्रम है नॉन स्टॉप गपशप, इसमें कुछ बातें हम करते हैं और जुड़ते हैं आप भी दिल से दिल तक, करते हैं आप भी अपने दिल की बातें अपने सभी FM रेनबो परिवार के सदस्यों के साथ। कार्यक्रम का अगला सेगमेंट, अगली कड़ी, अगला पायदान आज के दिन का रुख करने से पहले आवाज कुमार शानू की।

0: जी हाँ दोस्तों, आशिकी के लिए जरूरत है एक सनम की। और हमारा ये जो कार्यक्रम है नॉनस्टॉप गपशप, इसे आगे बढ़ाने के लिए अब जरूरत है
1: आज के दिन।
0: जी हाँ, तो बता दूं आपको कि आज के दिन कौन कौन सी वो खास बातें हैं जो हैं आज के दिन के नाम। तो आज का जो दिन है उसे हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। 119 देशों ने भाग लिया था और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया था। और वहीं से जन्म हुआ था प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करने की इस मूल भावना का। आज का दिन इस वर्ष लेकर आया है थीम जलवायु परिवर्तन और जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित। अब जलवायु के लिए, जी हाँ, इस वर्ष की थीम है अब जलवायु के लिए। इस वर्ष का मुख्य लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के लिए केवल बहस करने के बजाय वास्तविक और ठोस जलवायु समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्य रूप से बढ़ते हुए वैश्विक तापमान, जंगलों की आग और पिघलते ग्लेशियरों के गंभीर संकेतों को देखते हुए तुरंत कदम उठाना मुख्य लक्ष्य है विश्व पर्यावरण संरक्षण का। मेरी, आपकी और हम सभी आम नागरिकों की भूमिका है कम से कम एक वृक्ष लगाएं, उसकी देखभाल करें, प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश करें, घर से जब भी निकलें अपने साथ कपड़े का बैग जरूर लें, साथ ही साथ कचरे का सही प्रबंधन भी हमारी ही जिम्मेदारी है।

साथ ही साथ आज का दिन यानी कि 5 जून का दिन समग्र क्रांति दिवस, संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भारतीय राजनीति और समाज में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। 5 जून वर्ष 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। इसी दिन उन्होंने तत्कालीन सरकार के खिलाफ छात्र और जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पहली बार संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक नारा दिया। यहां संपूर्ण क्रांति का मतलब सत्ता बदलना नहीं बल्कि अलग अलग 7 क्रांतियों से है, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति मिलकर बनते हैं समग्र क्रांति, जो है इस संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता और राजनीतिक तानाशाही को समाप्त कर एक नई आदर्श और स्वच्छ व्यवस्था को स्थापित करने से के उद्देश्य से शुरू हुई समग्र क्रांति आज भी समग्र क्रांति दिवस के रूप में 5 जून को मनाई जाती है और इस दिशा में प्रति व्यक्ति अपना अपना सहयोग अवश्य करता है। बात करें अगर आज के दिन जन्मे लोगों की, तो आज के दिन जन्म हुआ था भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता नारायण मल्हार।

0: आर जोशी का वर्ष 1879 में। उन्होंने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और वर्ष 1929 तक उसके सचिव रहे। कांग्रेस में साम्यवादियों के प्रभाव के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ट्रेड यूनियन परिसंघ नामक एक नया संगठन बनाया। वे केंद्रीय विधानसभा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य भी रहे। ट्रेड यूनियन आंदोलन, जी हाँ, जिसके जन्मदाता हैं नारायण मल्हार जोशी। यह श्रमिकों का एक संगठित प्रयास है जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर अपने अधिकारों की रक्षा करना, उचित वेतन सुनिश्चित करना और बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए नियोक्ताओं के साथ बातचीत करना, मोल भाव करना, सौदेबाजी करना इस यूनियन का मुख्य कार्य है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1901 में। महाकवि गोविंद शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनुदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। भारतीय राज्य पुदुचेरी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, चौथे मुख्यमंत्री सुब्रमण्यम रामास्वामी का जन्म हुआ था 5 जून 1939 को। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा जनता दल के नेता, अरुणाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री प्रेम खंडू थंगून का जन्म हुआ था 5 जून वर्ष 1946 को। वर्ष 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल में जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आदित्यनाथ जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, उनके जीवन का एक आयाम लेखन भी है। अपने दैनिक वृत्त पर विज्ञप्ति लिखने जैसे श्रमसाध्य कार्य के साथ साथ वे समय समय पर अपने विचार को स्तंभ के रूप में समाचार पत्रों को भी भेजते रहते हैं। और अगर बात करें उनके रचनाओं की तो यौगिक षटकर्म, हठ योग स्वरूप एवं साधना, राजयोग स्वरूप एवं साधना तथा हिंदू राष्ट्र नेपाल उनकी मुख्य रचनाएं हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ें और बॉलीवुड का रुख करें तो बॉलीवुड के फिल्म निर्माता जिन्होंने जुर्म फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, जन्नत, आशिकी, गैंगस्टर, राज, मर्डर जैसी कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं बॉलीवुड को। मुकेश भट्ट, जी हाँ, मुकेश भट्ट का जन्म आज ही के दिन हुआ था वर्ष 1952 में। और जानी मानी अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं के फिल्मों में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। एक समय में इन्हें हिंदी सिनेमा में दिव्या भारती का नाम दिया जाने लगा था। जुड़वा, घरवाली, बाहरवाली, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी कई फिल्मों में नजर आई थी। कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ पर्दे पर नजर आई थी। असली नाम विजयलक्ष्मी और हम सब उन्हें जानते हैं रंभा नाम से। जी हाँ, उनका जन्म भी हुआ था वर्ष 1976 को आज ही के दिन, यानी कि 5 जून के दिन।
1: आज के दिन

0: जी हाँ दोस्तों, अगर हम आए हैं इस दुनिया में तो हमें सबसे पहला जो काम सीखना है वो सीखना है प्रेम करना, और सबसे पहला प्रेम अपने पर्यावरण से करना। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में समय हो चुका है
1: एक चुटकी नुस्खे,
0: और चुटकी भर ये जो नुस्खे होते हैं ये बड़े काम के होते हैं। और आज जो मैं आपको नुस्खे देने वाली हूँ, आप सब जानते हैं कि छुट्टियाँ चल रही हैं। जी हाँ, गर्मी की छुट्टियों में हम कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, छुट्टियाँ गर्मियों की हो, सर्दियों की हो, या कि फिर कोई खास वैकेशन हो। जब भी हम कभी घर से बाहर निकलें, ये तो कह दिया गया कि पौधे लगाइए, पौधे लगाइए, पौधे लगाइए। जो बाहर के पौधे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए पौधे हैं, वो अपना पोषण ज़मीन से एक वक्त आने के बाद ले लेते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे जो हमें फ्रेश एयर भी देते हैं, हमारी आंखों को सुकून भी देते हैं, घर को सजावटी लुक भी देते हैं, घर से बाहर जाते समय उनका क्या करें? तो उन्हें हरा भरा रखने के लिए सेल्फ वाटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। सभी गमलों को एक साथ छायादार जगह पर शिफ्ट कर दें, लेकिन छायादार जगह नमी से भरी हुई बिल्कुल ना हो। अगर आपके घर में कोई ऐसी कांच की खिड़की है जहां से सुबह की हल्की सी धूप आती है, तो बिल्कुल पौधों को एक साथ वहीं रखें। और जो सबसे असरदार नुस्खा है वो है कॉटन थ्रेड विधि, यानी कि एक सूती रस्सी लें, रस्सी थोड़ी सी मोटी हो, और उसे पानी की बाल्टी में डिप करें। जितने भी पौधे हैं सभी पौधों के साथ एक एक रस्सी को जोड़ते चलें और उन्हें मिट्टी में थोड़ा गहरे तक दबा दें। ये जो पौधे होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं, ये खुद ब खुद अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी लेते रहेंगे उस बड़ी बाल्टी से। अब कितना पानी डालें, ये तो आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं इस पर निर्भर करता है। ये तो बात हुई नुस्खे की। बेहतर होगा कि आप अपने किसी करीबी को, अपने किसी खास को दे जाएं अपने पौधों की जिम्मेदारी। पौधों के साथ जब बन जाता है एक रिश्ता, तो जिस तरह से हम घर में रहने वाले अपने अन्य सदस्यों की देखभाल करते हैं, बाहर जाते समय करते हैं उनका इंतजाम, जिस तरह से हम अपने पेट के लिए चिंतित रहते हैं, उनके लिए किसी से कहकर सहेज कर घर में किसी को रख कर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने पौधों से भी हम जुड़ जाते हैं। नुस्खा है, आजमाया हुआ है, आजमा कर देखिए कॉटन थ्रेड नुस्खा।
1: एक चुटकी नुस्खे।

जी हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं है तो हमारे कार्यक्रम में रौनक नहीं है। किस तरह मना रहे हैं आप विश्व पर्यावरण दिवस? क्या यह सिर्फ एक दिन है या आपकी जीवनचर्या है? जुड़ जाइए हमसे, बता दीजिए अपने सभी दोस्तों को क्या चल रहा है आज के दिन आपके जीवन में।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

घड़ी की सुइयों का इशारा हमारे कार्यक्रम अपने आखिरी मोड़ तक पहुंच चुका है। फिलहाल टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कोई जुड़ चुके हैं, हमारे एक कॉलर फ्रेंड मिल लेते हैं। कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, समय बहुत कम है। चलिए कोई बात नहीं, संपर्क नहीं जुड़ पाया इनसे, लेकिन बता दूं आपको, हमारे साथ थी टेलीफोन लाइन पर नम्रता, और नम्रता के पति एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, और उन्होंने बताया कि पिछले 6 साल से उनके पति प्रतिदिन एक पेड़ लगाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है।

हमारा जीवन साथी लगा रहा है एक पेड़, हम भी उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने आसपास के पूरे वातावरण में हरियाली लाने का संकल्प लें। इसी के साथ दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से। अपने होस्ट अपनी दोस्त पूजा को होगी आपसे मुलाकात फिर किसी सुबह फिर किसी शाम। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते रहें और जुड़े रहें दिल से दिल तक। छोड़े चलती हूँ आपको श्रेया घोषाल की आवाज के साथ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर आपकी दोस्त सविता हाजिर हो चुकी है लेकर कार्यक्रम तीन का तड़का, जिसे सुनकर आपका दिल है धड़का। स्वागत है, अभिनंदन है आपकी दोस्त सविता के साथ।

0: मेरे सवालों का जवाब दो। जी हाँ, बिल्कुल सच है कि सवालों के जवाब देते देते हम सब थक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अरे अब और इच्छा ही नहीं कर रही किसी भी सवाल का जवाब देने की। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा अक्सर हो जाता है कि हम लाइफ में त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इसीलिए तो हम आते हैं कि आप यदि परेशान हैं, कहीं दुखी हैं, कहीं निराश हैं, तो और किसी के सवालों के जवाब देते देते परेशान हो गए, तो ये जो तीन का तड़का है ना, जो आपके दिलों में एक सुरीली सी कहते ना कि कल्पना को जागृत कर देता है, और आप अपने ख्वाबों में, ख्यालों में गुनगुनाने लगते हैं। बस हमारी कोशिश यह ऐसी ही रहती है तीन का तड़का में। तो आइए बात हम करेंगे आपके साथ आज के दिन की। जी, आज के दिन की बात करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये आकाशवाणी कोलकाता है और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर आपकी दोस्त सविता को। साथ में हम पेश कर रहे हैं 3 का तड़का। दोस्तों आज है खास दिन, वो खास दिन क्या है ये तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल उसी खास दिन के साथ जुड़ी हुई है आज की हमारी योजना भी। बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो पर्यावरण है, कहते हैं ना कि वो एक चुनौती की तरफ जा रहा है। एक हमारे भीतर चिंता चलती आ रही है कि पता नहीं ये जो क्लाइमेट है वो कैसे ठीक होगा, क्योंकि पर्यावरण निरंतर निम्न स्तर की ओर चलता चला जा रहा है और विश्व की निगाह पर्यावरण पर ही है। तो दोस्तों आज है 5 जून और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे परियोजना प्रस्तुति पर, जिसमें आज हम लेकर आए हैं नमो गंगा योजना। बिल्कुल दोस्तों, पर्यावरण के ही साथ साथ चलती हमारी नमो गंगा योजना है, क्योंकि हमारी जो गंगा है वो भी निरंतर दूषित होती जा रही है और इस दूषित वातावरण से इसको मुक्त कराने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नमो गंगा योजना आरंभ की, हमारी भारत सरकार ने नमो गंगा योजना आरंभ की है। यह भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई जून 2014 में शुरू की गई एक प्रमुख एकीकृत संरक्षण मिशन है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को प्रभावी ढंग से साफ करना और उनको संरक्षण देना, उन्हें पुनर्जीवित करना है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य और कार्य है कि यह प्रमुख नियंत्रण जो प्रदूषण है उनको नियंत्रण करे, घरों और उद्योगों से निकलने वाले जो गंदे पानी को सीधे गंगा में जाने से रोकना और इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना है।

साथ ही नदी के घाटों का विकास करना है, जैसे कि प्रमुख जो घाट हैं, शमशान घाट हैं, उनका आधुनिकीकरण करना और उनका निर्माण करना, जैव विविधता संरक्षण करना, गंगा, डॉल्फिन, घड़ियाल और अन्य जलीय जीवों की रक्षा करना। इसके अलावा नदी की सतह की सफाई और गंगा बेसिन में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना। तो दोस्तों, नमामि गंगा कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। और इसके लिए राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 3,400 करोड़ का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है। इस निवेश का उद्देश्य गंगा नदी को पुनर्जीवित करने और 2025 तक निर्धारित स्नान मानकों को प्राप्त करने के लिए सीवेज उपचार क्षमता को बढ़ाना, जल गुणवत्ता में सुधार करना और औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन को विनियमित करना है। साथ ही विश्व की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी अत्यधिक जल दोहन और प्रदूषण के कारण गंभीर खतरों का सामना कर रही है, और जिसके कारण भारत की सांस्कृतिक विरासत का जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको एक खतरा उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने और गंगा नदी के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्यों के साथ नमामि गंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथ ही गंगा नदी बेसिन, भारत का सबसे बड़ा जो कि बेसिन है, जो देश के 27% भूभाग को कवर करता है। बेसिन का अधिकांश भाग लगभग 65.57% कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जल निकाय 3.47% क्षेत्र को कवर करते हैं। वर्षा के रूप में कुल जल प्रवाह का 35.5% प्राप्त करने के बावजूद गंगा नदी बेसिन भारत में दूसरा सबसे बड़ा अधिक जल संकटग्रस्त बेसिन है, जो साबरमती बेसिन के पास आता है। और प्रमुख भारतीय नदी बेसिनों में प्रति व्यक्ति वार्षिक वर्षा जल प्रवाह का केवल 39% ही प्राप्त करता है। तो दोस्तों, गंगा के पुनरुत्थान के लिए उद्देश्य से नदी की शुद्धता को बहाल करना, जिसमें अविरल धारा बहती रहे, निर्मल गंगा बहती रहे, इसकी सुनिश्चितता को सुनिश्चित करना ही इस योजना का प्रमुख काम है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर के देव भारत सरकार के द्वारा कदम से कदम मिला करके काम करें और हम अपनी गंगा नदी को बचाने की कोशिश करें।

0: जी हाँ दोस्तों, गंगा की जो करुण पुकार है, आइए हम सब सुने। हम उसमें मैल ना डालें, प्लास्टिक्स ना डालें, उसके अंदर गंदा गंदी चीज़ों को ना फेंकें, उसको साफ़ करने की बल्कि कोशिश करें। और जो कल कारखाने हैं अपने निकास को गंगा की तरफ मुख कर देते हैं, उनको ये समझना होगा उनको कि गंगा जीवन दायिनी है, हमारी माँ है, पोषण करती है। तो गंगा के इस करुण पुकार को हमें ऐसा करना है कि वो खुश हो और हमें हमारी इस जीवन दायिनी गंगा से हमें कभी भी अलग ना होना पड़े, कुछ ऐसा ही हम करें। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज के दिन के सेगमेंट की ओर।
1: आज के दिन
0: इतिहास में हर दिन किसी ना किसी अहम घटना से जुड़ा होता है। 5 जून एक ऐसी तारीख है दोस्तों कि जिस दिन कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। जून का पहला सप्ताह है

और इस दिन बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जो महत्वपूर्ण है। जब जी हाँ, भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया था आज ही के दिन। इसके अलावा 1659 में मुगल शासक औरंगजेब आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1953 डेनमार्क में आज ही के दिन नया संविधान लागू हुआ। 1972 संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 5 जून साल 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस संबंध में हम बातें करेंगे आगे भी। पर्यावरण दिवस बहुत जरूरी है दोस्तों आज के वक्त में मनाने के लिए, और सिर्फ मनाने के लिए नहीं, उसके बारे में जागरूक होने के लिए भी।

हर साल 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। यह प्रकृति की रक्षा करने और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक उत्सव है। और जैसा हमने बताया कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी इसकी शुरुआत। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग, प्लास्टिक प्रदूषण और वनों की कटाई जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए एक मंच प्रदान करता है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और स्वच्छ पृथ्वी के साथ मिल सकें। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्रकृति के साथ जीना, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक प्रणालियों से सुधार प्रदान करता है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि 2025 में एक पेड़ माँ के नाम, और इस अभियान को आमंत्रित किया जाता है क्योंकि उन्होंने ये अभियान चलाया ताकि जो पेड़ हैं जिनकी वनों की लगातार कटाई होती जा रही है, तो हमारी जो मनुष्य जाति है आज खतरे में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य यही है कि मातृत्व का सम्मान करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना। अब तक जी हाँ करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण किए जा चुके हैं और इसके बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना और इस धरा को, भविष्य को सुरक्षित रखना। तो आइए दोस्तों, हम सब भी इस राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान में देश के साथ चलें और एक पेड़ माँ के नाम लगाएं ताकि हम इस धरती पर वृक्षों की रक्षा कर सकें, इस धरती की रक्षा कर सकें, आने वाली पीढ़ियों को हम सूरज की गर्मी जो आज हमारे तन और मन को जला रही है उससे निजात दिला सकें और उन्हें एक छायादार वृक्ष दे सकें।

जी हाँ दोस्तों, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, बस सुनने भर से ही आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जी हमारे बॉलीवुड के कई कलाकारों ने इस पर्यावरण

संरक्षण को महत्व दिया है, जिनमें शाहरुख खान से लेकर माधुरी दीक्षित, दिया मिर्जा तक हैं। इन सेलिब्रिटीज ने ग्रीन फ्यूचर को बढ़ावा देकर के मिसाल बन रहे हैं और कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है और विश्व पर्यावरण दिवस पर ये सितारे कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, ग्रीन फ्यूचर को बढ़ावा देना चाहिए और उसके पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर लोगों के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि सितारे कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। शाहरुख खान ने भारत मोबिलिटी एक्सपो में 2023 में हुई आइकॉनिक 5 को पे, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि स्वच्छ परिवहन और प्रदूषण कम करने के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया। वहीं रितेश देशमुख, कुबरा सैद, सुनील शेट्टी, माधुरी दीक्षित, ये सभी लोग हैं जो कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण पर हम बढ़ावा दें और ऐसा कुछ काम करें ताकि हमारी इस दिशा में एक बड़ा कदम हो। और आइए अब आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, बॉलीवुड की जब बात हुई है तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर मनोरंजक गॉसिप और फिल्म रिलीज से जुड़ी सभी अपडेट्स, फिल्मों से जुड़ी जानकारी पर हम कोशिश करते हैं कि आपको रूबरू करवाते रहें, आपके साथ साझा करते रहें। तो आइए, दिलचस्प कुछ खबर आपके साथ है। इस सप्ताह शुक्रवार को OTT पर रिलीज होने वाली हैं कुछ फिल्में। जी हाँ, 1 से 5 जून तक माधुरी दीक्षित की माँ बहन, करिश्मा कपूर की ब्राउन, यूफोरिया सीजन 3 का फिनाले और भी बहुत कुछ। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जून के पहले सप्ताह में कॉमेडी, थ्रिलर, पारिवारिक ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का एक रोमांचक मिश्रण पेश हो रहा है। माधुरी दीक्षित डार्क कॉमेडी में वापस कर रही हैं, मिश्रा परिवार स्क्रीन पर लौट रहा है और करिश्मा कपूर अपनी बहुप्रतीक्षित OTT वापसी कर रही हैं, जिसके यह सप्ताह एक आप सभी के लिए काफ़ी रोमांचक हो सकता है और हाँ, व्यस्त भी हो सकता है, बताऊंगी मैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए एक गीत, उसके बाद हम आपके साथ बॉलीवुड न्यूज़ साझा करेंगे।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता, और तीन का तड़का सुन रहे हैं आप। हमारे समय हो चुका है 3:47:07, तो बहुत ही कम वक्त बचा है दोस्तों। और OTT पर कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं ये आपको झटपट जानकारी दे दें, इसके अलावा न्यू रिलीज़ क्या है ये भी। तो दोस्तों, गुल्लक 5 प्लेटफॉर्म, जी हाँ, सोनी लिप पर आने वाली है 5 जून को। TVF की लोकप्रिय

सीरीज मिश्रा परिवार की कहानी में एक नया अध्याय लेकर लौट रही है। मिश्रा निवास में बदलाव की आहट के बीच शांति का भाई पिंकी मिलने आता है और जिसके घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जमील खान, गीतांजलि कुलकर्णी और हर्ष मयार अपनी अपनी भूमिकाओं में वापस आ रहे हैं। इसके अलावा ऑफिस रोमांस 5 जून को आ रहा है, भूरा 5 जून को रिलीज तारीख है। और इसके अलावा यूफोरिया सीजन 3 भी 1 जून को रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ी आपके लिए बड़ी खबर ये है कि है जवानी तो इश्क होना है फिल्म सिनेमाघरों में 5 जून 2026 को रिलीज हो गई है। जी हाँ, जिसे अपने पापा डेविड धवन ने डायरेक्ट किया है, वहीं बाप बेटे की ये जोड़ी चौथी बार पर्दे पर देखने को मिलेगी। जबकि इससे पहले मैं तेरा, हीरो जुड़वा 2 और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में दोनों साथ काम कर चुके हैं। इसके चलते फैंस को जवानी तो इश्क होना है से काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी बीच फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों की तो भीड़ लगी होगी, लेकिन आप यदि कहीं मिस किए तो कोई बात नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी शो है आप जा सकते हैं। और सिनेमा घरों में अपनी सफलता पूरी करने के बाद, जी हाँ, कल आपने शायद देखा हो कि धुरंधर की स्ट्रीमिंग लाइव हो चुकी है। एक्शन से भरपूर ये ड्रामा बदला सत्ता संघर्ष और बड़े दाव वाले टकरावों से भरा है। इसके भव्य और असाधारण कहानी दर्शकों के सामने घर बैठे पेश की जा रही है। तो कल 4 जून को हुई थी, अब वो आपको मिलेगी टीवी पर। तो ये थी कुछ बॉलीवुड न्यूज़ जो हमने की आपके साथ साझा। और बिल्कुल समय बहुत कम है आपके लिए फिल्म चांदनी का ये गीत।

जी मैं तो चांदी नहीं सविता हूँ, और फिलहाल तो आपसे अब इजाज़त चाहूँगी कार्यक्रम समाप्त करने की, क्योंकि वक्त हो चला है 3:54:30, और मिलेंगे आपके साथ जी हाँ 5:15 पर। आपकी दोस्त सविता आपसे चाय एंड क्लासिक्स में मिलने वाली है एफएम गोल्ड यानी खरा सोना पर 100.1 पर, और इसके साथ 7 बजे छायालोक में हमारी मुलाकात 107 एफएम रेनबो पर फिर से एक बार होने वाली है। तो जाएंगे कहीं नहीं, बस थोड़ी सी चाय पी करके हम बैक टू बैक आपसे मिलने वाले हैं। तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि तपती धरती, तड़पता जीवन है, बिगड़ता पर्यावरण संतुलन है और अस्तित्व का संकट है। तो बस इसको पर्यावरण दिवस पर ये एक संकल्प ले लीजिए कि माँ के नाम एक पेड़ लगा लीजिए और कोशिश करिए कि हम इसको प्रदूषण मुक्त रखें अपने तरीके से। ये हमारा अधिकार नहीं सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को लगन के साथ हमें कंप्लीट करना होगा, इसको पूरा करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और इसी अंतिम गीत के साथ आपकी दोस्त सविता फिलहाल आपसे चाहेगी इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, 107 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम 3 का तड़का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
4: তুমি শুনছো উইকেন্ড ক্যাফে 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ক্যাফে, উইকেন্ড ক্যাফে।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: জানো, আমি কাল আমার ভাইপোর বাড়িতে গিয়েছিলাম, দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে ওরা সারা দিন এসি চালায়, রোজ ওয়াশিং মেশিন চালায়, বাড়িতে দুটো ফ্রিজ, তার সত্ত্বেও ওদের ইলেকট্রিক বিল কত আসে জানো? জিরো। আমি প্রশ্ন করতে ভাইপো বলল,
4: কাকা সবই উপরওয়ালার দয়া, মানে সোলার প্যানেলের।
3: আমি ভাবছি এবারে তো লাগাতেই হবে। পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা, যুক্ত হতে রেজিস্টার করুন pmsuryaghar.gov.in।
5: হর ঘরে সূর্য ঘর।
6: তুমি শুনছো উইকেন্ড ক্যাফে 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ক্যাফে, উইকেন্ড ক্যাফে।

0: जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो छायालोक में करती है आपकी दोस्त सविता। जी हाँ, वादा करके गई थी कि आऊँगी मैं 5 तारीख को, और लीजिए हाजिर हूँ स्टूडियो में लेकर के सैटेलाइट सुपरहिट्स। आज हम पूरा 2 घंटा रहने वाले हैं और क्या बातें करने वाले हैं ये जान करके तो आपका मन बाग बाग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो एक गीत प्यार भरे नमस्कार के साथ।
1: मैंने

जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी ही अजीब सी बात है ना कि यदि आपका दिल किसी से लगता है तो लग जाता है, वरना वर्षों मिलते रहते हैं फिर भी आप उसके साथ नहीं जुड़ पाते। हमारा और आपका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल हमने एक दूजे को देखा नहीं है, लेकिन आप, मैं सच कहती हूँ कि शायद आप भी हमसे प्यार करते हैं और हम तो करते ही हैं। और लेकर आ गए हैं सुपर हिट सेलुलॉइड्स, आज है फ्राइडे और पूरे दो घंटे आज कुछ ऐसा ही रोचक किस्सों का और बातों का सिलसिला चलने वाला है। और क्या चलने वाला है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2213131 पर। और आपकी कोई सुपर हिट ऐसी फिल्म है जो आपके दिलो दिमाग पर रह गई है तो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल तो एक गीत आपके साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, ये तो म्यूज़िक का जादू है कि हमारी पूरी की पूरी शाम कट जाती है। बिल्कुल प्यार भरे नमस्कार के साथ एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी दोस्त सविता 107 FM रेनबो छाया लोक में। हमारा और आपका मिलना तय था, वादे की शाम भी आ गई है और कुछ गीतों बातों के साथ हम अपनी पूरी शाम बिताएंगे। दोस्तों, घुला मिला होगा मोहब्बतों का रंग, मुस्कुराहटों और बेबाकियों का मलंग। सुपरहिट फिल्मों के बारे में बातें होंगी। आपके दिल में यदि कोई फिल्म है जो दिलो दिमाग पर बस गई है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य आ सकते हैं, क्योंकि आज, जी हाँ दोस्तों, आज मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लेकर आई और कोई मैं अपना प्रोग्राम अपने तरफ से नहीं। हाँ, यदि आपके साथ हमारा फ़ोन पर किसी कारण से तारतम्य जो है, एक सिलसिला यदि टूट जाएगा तो ज़रूर मैं अपनी बात कहूँगी, नहीं तो आप ही की बात आज सुनने वाली हूँ। और आप यदि कोई फरमाइश किसी गाने की, किसी फिल्म की करेंगे तो वो भी सुनवाने की कोशिश पूरी करूँगी। फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, किसी कारण से उनकी जो कॉल है वो ड्रॉप हुई है, तो फ़िलहाल हम बात करते हैं एक फ़िल्म की। जी हाँ, फ़िलहाल हमारे साथ उनका जो सिलसिला टूटा फ़ोन पर, तो हम बात कर रहे हैं। एक फ़िल्म आई थी, आपने सभी ने देखी होगी और वो फ़िल्म सभी को बहुत पसंद तो आई, उसके गीत बहुत चर्चित हुए, लोकप्रिय हुए। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं फ़िल्म राजा की। आपको याद होगी वो फिल्म जो राजा मूवी आई थी, बॉबी देओल की 1995 में डेब्यू फिल्म थी बरसात, और माधुरी दीक्षित संजय कपूर की फिल्म राजा के गानों का खुमार सभी संगीत प्रेमियों के दिल पर खूब उतरा था। उस फिल्म को पसंद तो किया ही गया था, बल्कि जो संगीत था वो दिलो दिमाग पर छाया रहा। तो सुनते हैं फिल्म राजा का गीत, लेकिन एक श्रोता जुड़ चुके हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हम उनको ऑन एयर ले लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अरूप बोल रहा हूँ।
0: अरूप जी, जी बताइए
1: कैसे आपको सुना जाती
0: है? अच्छा, बताइए आप कैसे हैं?
1: अच्छा
0: है। अच्छे है, चलिए। रहते कहाँ हैं आप?
1: हम रहते हैं हावड़ा से।
0: हावड़ा में जी, आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ सुनता है।
0: सुनते हैं, और कैसा लगता है?
1: अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, चलिए आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: मैं तो कहना चाहता हूँ जोड़ीदार तो माने बहुत है, लेकिन हमारा जोड़ीदार है अमिताभ बच्चन, रेखा। अमिताभ

0: जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वो गाना बजाइएगा
0: जी,
1: बढ़िया वाला गाना है।
0: जी जी जी,
1: हम पुराना गानों का भूखा है।
0: चलिए, तो दोस्तों हमारे साथ अरूप जी जुड़े थे और उन्होंने एक गाने की फरमाइश भी कर दी, लेकिन मैं फिलहाल राजा फिल्म का गीत सुनवाने वाली हूँ।

0: जी हाँ दोस्तों, छाया लोक में आज बात कर रहे हैं हम सुपर हिट उन फिल्मों की जो कि कई बार हमारे जहन में बस जाती हैं और वो एक इतिहास बना जाती हैं। और क्या बात करने वाले हैं हमारे अगले कॉलर, देखते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ आप कौन बोल रही हैं?
1: हाँ दीदी, हम पायल बोलती, बेलखुड़िया थे के।
0: पायल जी बताइए क्या कहना चाहती हैं?
1: हाँ दीदी, गानगुलो खूब सुंदर लगजे, प्रतिदिन मत अनुष्ठान सुनछी, भालो लगजे, एकटू गरम पड़े तो कैमन आछो तुम्हारा बोलो?
0: अमी भालो आछी, और केनो गरम केनो लागछे? आज के तो खूब बृष्टि होयेछे।
1: হ্যাঁ বৃষ্টি হয়েছে, বাট দিদি গরমটা কিন্তু যায়নি, গরমটা একই রকম আছে।
0: चलो तो बारिश मतलब दो तीन दिन लगातार बारिश हो तब गर्मी जाएगी, है ना?
1: हाँ बिस्टी होच्छे बट गरम तो जाच्छे ना। तो दीदी तुम्ही टॉपिक टा एक बार रिपीट कर दो प्लीज।
0: टॉपिक तो आज सेलुलॉइड सुपरहिट से, यानी कोई सुपरहिट फिल्म जिसके बारे में आप बताना चाहती हो या कहना चाहती हो या उसका कोई गाना सुनना चाहती हो, कोई खास सीन हो उसकी बात करना चाहती हो तो वो कर सकती हो।
1: अच्छा, मैंने कार फिल्म में कथा बोलने,
0: किसी का भी जो तुम्हारी पसंद का हो।
1: अच्छा, हमारे पसंद है फिल्म कौन था सही?
0: जी हाँ,
1: ओके দিদি, আমি যেটা বলতে চাই, আমার পছন্দের ফিল্ম এটা সবসময় আমার বীর যারা, আমার খুব পছন্দের ফিল্ম।
0: বীর যারা, বীর যারা কা গানা মত বললা, কিউকি অল টাইম তুম খালি বীর যারা কা গানা বলতি হো।
1: হ্যাঁ না কেন দিদি, আমি একটু বলি বীর যারাটা আমার কেন এত ভালো লাগে। যে আমরা মানে এই যুগে দাঁড়িয়ে, একটু বলছি দিদি, একটু এক্সপ্লেন করছি কেমন, তো এই যুগে দাঁড়িয়ে আমরা না প্রত্যেকে অধিকারটা নিয়ে না খুব ব্যস্ত, যে আমার অধিকার চাই, অধিকার বোধটা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকি। কিন্তু বীর যারা এমন একটা সিনেমা যেটা দেখানো হয়েছে দিদি, যে মানুষের অধিকারটা কিন্তু সব থেকে বড় কথা নয়, হিরো হিরোইনের মধ্যে কিন্তু ওদের মধ্যে কিন্তু বিয়েটা হয়নি কি, তাই তো? আমি যদি খুব ভুল না করি, কিন্তু তাও ওরা কোনো অধিকারের জন্য নয়, শুধুমাত্র ভালোবাসার জন্য একদম শেষ পর্যন্ত দুজন দুজনের জন্য ওয়েট করেছিল। লাস্ট সিনটা যেটা, নায়ক যখন তোমার জেল থেকে বেরোলো, নায়িকার সাথে মুখোমুখি হলো, তখন অলরেডি ওরা অনেকটা বয়স হয়ে গেছে কি, তো সেইটা মানে অধিকার বোধটা যে ওদের মধ্যে, তার আগেও যে ভালোবাসার জিনিসটা ওদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে, মানে এর জন্য আমার ফিল্মটা এতটা ফেভারিট, এটাই তোমায় এক্সপ্লেন করলাম।
0: চলো আচ্ছি বাত হো, আর ইয়ে ফিল্ম বহুত হিট ভি হুই আর লোগো কে দ্বারা পছন্দ ভি কি গই থি আর মুঝে ভি বহুত আচ্ছি লাগতি হ্যায় এই ফিল্ম পায়ল।
1: আর একটা গান বলছি দিদি, এই সিনেমা যদি পারো শুনিয়ে দিও, যদি সম্ভব হয়।
0: হ্যাঁ কোন সা,
1: তুমি ওই গানটা শুনিও, ওই তেরে লিয়ে যে গানটা রয়েছে একদম লাস্টে হবে সিনেমা।
0: ঠিক আছে, ওকে,
1: যদি পারো শুনিও।
0: ওকে ওকে। तो हमारे साथ पायल जुड़ी थी और उन्होंने वीर ज़ारा फिल्म की बात की, और सचमुच में वीर ज़ारा फिल्म जो बनी वो एक माइलस्टोन थी। और हमारे साथ एक फरमाइश आई थी, बताते हैं, सुनवाते भी हैं।
2: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स,
0: एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, उनको लेते हैं और उसके बाद हम गाना सुनवाएंगे। हेलो हेलो
3: हेलो,
0: हाँ कौन बोल रहे हैं आप?
3: गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, आप कौन बोल रहे हैं?
3: दीदी मैं शेख आजादुल बात कर रहा हूँ, महेशला आदर नगर से।
0: जी क्या नाम बताया आपने?
3: शेख आजादुल।
0: शेख काजरुल
3: आजादुल, आजादुल
0: आजादुल आजादुल जी, आजादुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए कैसे हैं?
3: दीदी मैं तो बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छे लगते हैं, अच्छे कैसे, आपने तो देखा नहीं मुझे।
3: नहीं नहीं, बात सुन के लग रहा है आप बहुत अच्छे हैं।
0: अच्छा मैं अच्छी हूँ, अच्छा थैंक यू।
3: तो दीदी,
0: हाँ बताइए।
3: फिल्म के बारे में बात करना चाहता था, तो तुमसे अच्छा कौन है?
0: तुमसे अच्छा कौन है? अच्छा

0: फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका गाना भी बहुत बढ़िया है। अगर हो सके तो चांद तारे फूल शबनम और टाइटल सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: इसमें कौन है तुमसे अच्छा, कौन में?
0: नया नया हीरो हीरोइन था सर, नाम आप मुझे याद नहीं है अभी।
1: ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके,
0: ठीक है दीदी।
1: तो हमारे साथ जुड़े थे अभी अजारुल साहब और उससे पहले पायल। फिलहाल एक गीत।

0: फिल्म परवाना का ये गीत आपने सुना। आवाज़ थी किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की और ये अरूप जी की फरमाइश थी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक कॉलर, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रानाघाट तिल्लांगा से प्रद्युत बोल रहा हूँ।
0: प्रद्युत जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है छाया लोक में। बताइए कैसे हैं?
1: थैंक यू मैम।
0: और बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: हाँ, आपका प्रोग्राम सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है आपको, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं कि यदि हमारे बजाए हुए गाने आपको पसंद आए तो अच्छा लगता है।
1: और आज वेदर भी इतना अच्छा है कि मतलब चालों का गाना भी इतना अच्छा आप बजा रहे हो कि बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी, वेदर तो अच्छा हो गया है, लेकिन अभी अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी पायल, वो बोली थोड़ी सी गर्मी लग रही है।
1: बात करना चाहता हूँ कि आनंद पिक्चर के बारे में।
0: आनंद जी, बड़ी अच्छी पिक्चर थी।
1: हेलो।
0: हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ।
1: हाँ मैम, मैं आनंद पिक्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जी का।
0: हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: हेलो।
0: हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आनंद पिक्चर के बारे में। शायद हमारी आवाज कट रही है और वो उनके साथ कट गया है फोन। तो फिलहाल हम गीत सुनवाएंगे फिल्म वीर ज़ारा का और देखते हैं, जुड़ते हैं फिर हमारे साथ और दोस्त।

0: सच है कि ज़िंदगी कितनी भी हताश हो, कितनी भी निराश हो, लेकिन कोई कोई कोई तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसके कारण आपकी आँखों में दिए जलते रहते हैं उम्मीद के, और प्यार मोहब्बत हमेशा बरकरार रहता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
1: गुड इवनिंग जी, मैं जीतू बात कर रहा हूँ।
0: जीतू जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे, आप रेगुलर कॉलर हैं और जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, बताइए।
1: जी बिल्कुल जी, और आपका जो प्रोग्राम ही होता है इतना मतलब अच्छा, और गाने जो बजते हैं अच्छे अच्छे, तो रेगुलर तो मतलब सुनना पसंद करेंगे ही
0: जी।
1: और आज भी आपका प्रोग्राम जो अच्छा हो रहा है, गाने भी बज रहे हैं
0: जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: आज मैं एक सुन है इसके बारे में मैं मतलब बातें करने वाला हूँ। मैं गोविंदा का फिल्म का नाम है आंखें, जिसमें गोविंदा जो है डबल रोल में नजर आए थे उस पर्दे पर, और उसके साथ में जो थे जे के पांडे भी थे, और भी बहुत सारे कलाकार थे, कादर खान थे, कादर खान का भी डबल रोल था उसमें। और फिल्म वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उस फिल्म में जो गाने भी थे ना वो भी हमको अच्छे लगे थे। एक गाना था फिल्म में वो लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता, वो काले कुर्ते वाली अपना नाम तो बता, जो सॉन्ग था ये सॉन्ग मुझे बहुत ही अच्छा लगा था।
0: अच्छा, तो ये कोई लाल दुपट्टे वाली थी जिसका नाम आपको पूछना था लाइफ में?
1: बिल्कुल ऐसी कुछ बात नहीं थी, लेकिन ये जो मतलब फिल्म उस समय का जो 90s का था मतलब, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब जो फरमाया लग रहा था उस समय, देखिए जो सिंगर भी हो रहा है बस, तो जब गाना गाते थे तो लग नहीं रहा है कि कोई सिंगर गा रहा है, लग रहा था कि इस फिल्म में गोविंदा ही गा रहा है इस गीत को, और जे के पांडे गाते हैं
0: जी,
1: मतलब तो इसलिए उस गाने से और उस मतलब फिल्म को जैसे बनाया गया था तो देखने से बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब गाने को भी बहुत पसंद आया, और गाना मतलब मेरा फेवरेट उस फिल्म का ही मेरा फेवरेट गाना है।
0: जरूर जीतू जी, मैं कोशिश करूंगी, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है?
1: बिल्कुल, थैंक यू जी,
0: थैंक यू। तो फिल्म आंखें की उन्होंने बात की थी, कुमार सानू, सुदेश भोंसले, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक ने ये गाना गाया था, इंदिवर ने बोल लिखे और बप्पी लहरी ने इसका म्यूजिक दिया था। फिल्म थी आंखें।

जी हाँ, नाम पूछते पूछते हमारे 58 मिनट निकल चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, वक्त हमारा धीरे धीरे यूं ही गुजर जाता है और बात कर रहे हैं हम उन सेलुलॉइड फिल्म्स की, सुपरहिट्स की, जो कि हमारे दिलो दिमाग पर कई बार रह जाती हैं। नदीम श्रवण की 1996 में एक के बाद एक तीन फिल्में आई। एक दौर था जब सारी की सारी नदीम श्रवण संगीतकार की जोड़ी हिट हो रही थी और एक के बाद एक ऐसे गाने दे रही थी जो कि बस उन्हीं के गाने गूंज रहे थे। और 1996 में उनकी फिल्म आई जो कि म्यूज़िक ब्लॉकबस्टर था। उनकी एक फिल्म का म्यूज़िक तो इतना शानदार था कि पूरे 2 साल तक उसके कैसेट्स बिकते रहे। मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। किस मूवी की बात कर रही हूँ मैं? जी हाँ, ये तीनों फिल्में थीं साजन चले ससुराल, जीत और राजा, राजा हिंदुस्तानी। जी हाँ, राजा हिंदुस्तानी की ने तो एक हिस्ट्री बना दी थी। इन तीनों ही फिल्मों में उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक की मखमली आवाज़ से सजे ब्लॉकबस्टर गाने थे। दोस्तों, यदि हम बात करें उनकी इन तीनों फिल्मों की, तो जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं साजन चले ससुराल की। 12 अप्रैल 1996 को रिलीज़ हुई। गोविंदा तब्बू, करिश्मा कपूर स्टारर इस फिल्म को। निर्देशन डेविड धमन ने किया था। कादर खान ने डायलॉग लिखे। म्यूज़िक नदीम श्रवण का था।

यार यारा मिलना हमारा तो हमारी शाम को तो हसीन और रोमांटिक बनाएगा बिल्कुल। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौर को फिल्म जीत में, और बात हम कर रहे थे इससे पहले, इस गाने को सुनवाने से पहले, नदीम श्रवण की। जी हाँ, नदीम श्रवण की जो म्यूज़िकल हिट्स थी वो थी साजन चले ससुराल, जीत और राजा हिंदुस्तानी। और हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 12 अप्रैल

1996 को रिलीज हुई थी साजन चले ससुराल गोविंदा तब्बू करिश्मा कपूर की फिल्म। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि नदीम श्रवण ने शुरुआत में इस फिल्म में म्यूजिक देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने हामी भरी। कुछ उनके कारण थे जिसके कारण उन्होंने ना किया था। मूवी में 36 मिनट के 7 गाने थे। साजन चले ससुराल का म्यूजिक सुपर हिट हुआ और फिल्म के मकबूल जो गाने थे दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है और दूसरा गाना वो सुनवाऊंगी मैं बताऊंगी नहीं। फिल्म के ज़्यादातर गानों में कुमार सानू उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाए थे। साजन चले ससुराल एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। स्क्रीन प्ले किया था रूमी जाफरी ने और फिल्म 1992 में आई तेलुगु फिल्म अल्लारी मोगुडू का रीमेक थी, शायद आप जानते हो। तो आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 2213134 पर जुड़ सकते हैं और अपने मन की या कोई आपको ऐसी जानकारी है कोई ऐसी फिल्म सुपरहिट सेलुलॉइड्स जो कि इतिहास बना दिया उसने इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई अपने दर्शकों के बीच तो आप ज़रूर मेरे साथ साझा कर सकते हैं क्योंकि कुछ कुछ जानकारी तो मुझे भी चाहिए ना।

0: लेकिन दोस्तों मैं धोखेबाज एकदम नहीं, वादा करके गई थी कि 5 तारीख को आऊँगी और 5 तारीख को आ ही गई। और फिलहाल मैं आपसे एक और वादा करती हूँ, जी हाँ, मैं 9 तारीख की सुबह आने वाली हूँ, नॉन स्टॉप गपशप पर आपसे मुलाकात होगी। लो आ गई उनकी याद में भी, FM गोल्ड पर आपसे मुलाकात होगी, सुबह सुहानी सुबह में भी आपके साथ मुलाकात होगी 7 बजे FM गोल्ड पर 9 तारीख को। तो मेरा वादा एकदम सच्चा है, झूठा नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ आप कौन बोल रहे हैं? जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कैसे हैं? भालो अच्छी, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
1: गान सुनते चाहिए।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: छोबी ना बच्चे कहो ना प्यार है, ताज चलता हूँ।
0: कहो ना प्यार है का कौन सा गाना? कौन सा गाना?
1: टाइटल सॉन्ग कौन सा है?
0: अच्छा टाइटल सॉन्ग, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ आपको वो गाना सुनवाने की, ठीक है?
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, तो उनकी तो एक फरमाइश थी कहो ना प्यार है फिल्म के लिए, तो दोस्तों मैं उनका कोशिश करती हूँ सुनवाने की और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं जो आपके दिल में हो उसके बारे में। और हम बात कर रहे थे फिलहाल फिल्मों की, जिसमें मैंने बात की थी कि साजन चले ससुराल की। अब यदि मैं बात करूं करिश्मा कपूर और आमिर खान द्वारा लीड रोल में बनाई गई एक फिल्म थी, जी हाँ, राजा हिंदुस्तानी, 1996 में आई ये फिल्म, डायरेक्टर थे धर्मेश दर्शन। और इस फिल्म को अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा ने मिलकर के प्रोड्यूस किया था। दोस्तों ये फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि नदीम श्रवण का म्यूज़िक था और गीतकार समीर की तिकड़ी थी। जी हाँ, समीर थे और इसमें नदीम श्रवण थे, तो तीनों की तिकड़ी ने जो म्यूज़िक दिया था वो ब्लॉकबस्टर रहा। फिल्म में 51 मिनट की लंबाई के 8 गाने रखे गए, जिसमें एक के बाद एक सभी हिट रहे, जैसे आए हो मेरी ज़िंदगी में, परदेसी परदेसी, पूछो जरा पूछो, कितना प्यारा, तुम्हें रब ने बनाया, तेरे इश्क में नाचेंगे, सभी सॉन्ग्स लोगों को पसंद आए। और गाने की शुरुआत में जो कहते हैं ना कि फिल्म को 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। तो आइए सुनवाते हैं आपको राजा हिंदुस्तानी का गीत और फिर आगे बढ़ते हैं अपने हम जर्नी पर।
2: मुझे क्या हुआ

0: दोस्तों, ये गीत सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे मेरे दिल की पूरी बात इस गीत ने कह दी है कि तुम्ही को चाहता है। बिल्कुल दोस्तों, तुम्ही को मेरा दिल चाहता है, और कोई यदि मुझसे गलती हो जाए तो खफा मत हो जाना, ये भी मेरा दिल कह रहा है। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक हमारे कॉलर, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो,
1: प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल, बताइए कौन, आपका नाम तो बता दीजिए।
1: जी, मैं पारस पंडित चुजरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: पारस पंडित जी, जी बताइए कैसे हैं आप।
1: जी बहुत अच्छे हैं दीदी, आप कैसे हैं दीदी।
0: मैं सही हूँ, और जब आप लोग आ जाते हैं तो और भी अच्छी हो जाती हूँ।
1: जी और आपका भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं।
0: अच्छा, चलिए अच्छी अच्छी बात है, ये हम लोगों का आपस का एक दूसरे का कनेक्शन है।
1: जी जी, जरूर जरूर,
0: बिल्कुल। बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: तो आज तो पर्यावरण दिवस है।
0: हाँ, मैं आपने मेरे दिल की बात जान ली, क्योंकि आपके बाद ही मैं बोलने वाली थी कि आज पर्यावरण दिवस है।
1: आज पर्यावरण दिवस है तो यार, चारों तरफ तो हरियाली हरियाली है हमारे यहाँ। फिर भी मैं जहाँ तक हो सकता है पेड़ पौधों की रक्षा करता हूँ, और छोटे छोटे पेड़ लगाता हूँ, जैसे पपीता हुआ, तुलसी हुआ, ये घर में लगे हुए हैं। फूल के भी पेड़ लगे हुए हैं गमले में, जो बहुत ही मैंने घर को भी शोभा बढ़ाता है और पर्यावरण को भी शोभा बढ़ाता है।
0: सही बात है एकदम। और 5 जून को हर साल मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, और ये हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए, उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक उत्सव है ये। तो ये हमारे पारस पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं उनके जस्ट बाद कहने ही वाली थी कि दोस्तों, ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, जैसी गंभीर समस्याएं हैं, इनका समाधान हमें खोजना है। और इसका समाधान खोज करके व्यवहारिक रूप से हमें डेली अपने डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम, जी हाँ, माँ के सम्मान में, उनके प्यार में हम एक पेड़ देश के लिए लगाएं, क्योंकि हमारी ये जो धरती है ना, ये भी तो माता ही है ना, और इसे हम माता की तरह ही पूछते हैं, क्योंकि ये हमारा पालन पोषण करती है। तो क्यों ना हम एक पेड़ इस धरती माँ के नाम ही लगाएं, और इस जागरूकता को सभी के बीच में फैलाएं। बस बात इतनी करते करते मैं दूसरे एक गीत की तरफ चलूंगी, जिसकी फरमाइश हमसे की गई थी, और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।

0: जी हाँ, सच में दोस्तों, प्यार से भला किसे एलर्जी नहीं एलर्जी होगी। हर कोई चाहता है कि उसे प्यार मिले, चाहे वो उसकी ज़िंदगी में माँ का प्यार हो, पिता का हो, उसकी प्रेमिका का हो, या उसकी पत्नी का हो, या बच्चों का हो। प्यार तो हर इंसान चाहता है, और आप सभी को प्यार मिलता रहे यही हमारी दुआ है। और हमारी इस दुआ के साथ साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, आपका नाम बताइए पहले।
1: मेरा नाम है अशोक दत्त।
0: अशोक दत्त,
1: पुलिस से बोल रहा हूँ
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: आप आपको हम सुनते हैं लेकिन फोन नहीं करते, आपका आवाज बहुत मीठा लगता है मेरे को
0: जी।
1: एक पक्का है तो अभी वो नाम भूल जाते हैं बस।
0: मेरा नाम है सविता। सविता, सविता,
1: सविता मेरा लड़की का नाम है, संगीता। ठीक है, और बोल रहा हूँ ये देखिए, आज परिवहन दिवस है ना। मैं तो सुबह 3 पेज लगा रहा था, तो मेरा बेटी बोला अरे तू पिताजी अब तो सुबह उठ के तो पैर में लग गया। अब जानते हैं परिवेश, हमने सुना था लेकिन आज का दिन मेरा इसे मकान में 20 गो बराबर आप पेड़ है, जैसे 6-7 पेड़ में आम तो आया है। मैं तो बस्ती में पूरा भरता हूँ, बहुत आदमी ले जाता है ना। हर किस्म का है, नीम का पेड़ है और सोने डाटा का है, डूमर का है, और ऐसे 12-13 तो खाली आम का है, बहुत किस्म का आम है। और इसे और भी है, जैसे कुछ है दामी साग, सब बहुत कुछ लगा के रखा है। मैं तो मतलब पेड़ का ऊपर पड़ा रहता है, पेड़ का एक डाल एक काला जामुन है। अभी कल बहुत सा तूफान है था तो एक गिर गया है, मेरा बहुत कष्ट होता है। और आप जो हाँ, और आप जो गाना बजा रहे हैं ना, बहुत अच्छा गाना है। हम तो देखिए छोटा से मतलब मेरा उम्र 15 साल से मैं हिंदी फिल्म बहुत सारे देखे। उस टाइम हम साल के में रहते थे और वहाँ तो पोचू ढाल था ना, और मतलब से बहुत पुराना पुराना मतलब फिल्म जो देखा है। अभी भी हम कहीं भी फन करता हूँ ना, धूल का फूल वो जो गाना है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद है, मोहम्मद रफी ने गाया है, ये सब गाना बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो पुराना गाना सुनाते ही है, अभी जो सुना रहे हैं ये भी अच्छा है। देखिए प्यार तो हर आदमी से करता है, प्यार नहीं तो जिंदगी नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अशोक जी, आपने इतनी अच्छी बातें करी हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आपके यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, तो मेरा दिल कर गया है कि मैं आपके यहाँ आ जाऊँ और वो सब जगह देखूँ और ढेर सारे आम भी लेकर के जाऊँ। देंगे मुझे
1: मेरा रास्ते में आम सब है, बोलता है अरे बच्चा तो लेकर चले, मेरा यहाँ कोई मेरा तो मकान में कोई बाउंड्री भी नहीं है, खुला है। मतलब जब काला जामुन हुआ सब आदमी लोग आता है, शुगर का हमने काट देगा, बहुत गंदा होता है। नहीं मत काटिए, आज कई साल से काला जामुन तो बहुत होता है।
0: वाह, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: देखिए पेड़ नहीं तो अभी मेरा
0: जिंदगी नहीं। बिल्कुल,
1: मतलब पेड़ रहने से इतना गर्मी जाता है, तो मैं कुर्सी लेके पेड़ का तार में बैठ जाता हूँ, तो वहाँ ना पेड़ का वहाँ बैठने से हवा नहीं भी चलेगा तो वहाँ आपको ठंड देगा। एक पेड़ का जो जड़ है ये पानी पकड़ के रखता है, ये आदमी जानता है कि नहीं, जानता नहीं हूँ, लेकिन इसका तार में पानी रहता ही है
0: जी। तो अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर एक बार जुड़िएगा हमारे साथ प्रोग्राम में, ठीक है?
1: जरूर, अब अच्छा लीजिए
0: जी,
1: बात कर बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं
0: जी शुक्रिया। तो अशोक जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने हमारे साथ ढेर सारी बातें की और पर्यावरण के बारे में भी उन्होंने कहा, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि पर्यावरण के प्रति हम सभी धीरे धीरे जागरूक होते चले जा रहे हैं। और दोस्तों बात हम कर रहे हैं कि कुछ सेलुलॉइड फिल्म्स की,

सलमान खान नगमा स्टारर फिल्म बागी आई थी, आमिर खान माधुरी दीक्षित की दिल पिक्चर आई थी जो काफ़ी चली, और राहुल अनु अग्रवाल की आशिकी, अमिताभ बच्चन की अग्निपथ इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा 1990 की टॉप फिल्मों में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म और आई थी जो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले दिल फिल्म का गीत।

0: दोस्तों हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ना चाहते हैं, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ आपका नाम बताइए। उनकी कॉल ड्रॉप की है। और दोस्तों हमारा आखिरी गीत प्ले करने का वक्त आ चुका है। और अंतिम गीत मैं जो फिल्म की बात करना चाहती हूँ वो है फिल्म हीरो, 1983 में बनी हिंदी भाषा की रोमानी एक्शन फिल्म। ये सुभाष घई द्वारा निर्देशित थी। जैकी श्रॉफ, जिन्हें जैकी के रूप में जाना जाता था, उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। और अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री थी। उन्हें 1981 में मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था और वो बनी थी इस फिल्म की हीरोइन। और इस फिल्म ने कितनी लोकप्रियता हासिल की इसके बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है और हमारे एक दोस्त जुड़ गए हैं। देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो। के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। और चलते चलते चलिए फिल्म हीरो का गीत आपको सुनवाते हुए आपकी दोस्त सविता बस इतना ही कहना चाहेगी कि शब्द रुखसत कहना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये इजहार ए मोहब्बत नहीं बल्कि इजहारे विदाई है। जी हाँ, अलविदा कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए तो मैं। और जाते जाते एक शेर आपकी नज़र करती हुई जा रही हूँ कि उसको रुखसत तो किया, मुझे मालूम ना था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। तो कोई बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं है, हम मिलने वाले हैं। और 9 तारीख को सुबह के कार्यक्रमों में मैं मिलने वाली हूँ 107 FM रेनबो में, गपशप पर, नॉन स्टॉप गपशप पर मैं मिलूँगी। और सुबह, जी हाँ, FM गोल्ड पर सुनना ना भूलें, अच्छे पुराने गीत सुनवाऊँगी सुहानी सुबह में 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। और उसके बाद कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद 11:10 पर खरा सोना पर। तो इसी के साथ अब रुखसत कीजिए मुझे, और ज़्यादा वक्त नहीं है तो चलिए चलते चलते आपकी नज़र ये गीत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, मुस्कुराते रहिएगा।